0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उष्ट बाटी गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: ओहो, आज त धारामा कति धेरै धमिलो पानी आएछ है।
1: अब वर्षा लाग्न थाल्यो। यस्तो पानीले त झाडा पखाला, आउ, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरू लाग्ने गर्दछ। त्यसैले पिउने पानी शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउनु पर्दछ नि।
0: हैन छोरी, यो शुद्धिकरण भनेको चाहिँ के रहेछ?
1: पानी शुद्धिकरण भनेको पानीलाई राम्ररी उमाल्ने वा फिल्टर गर्ने, सेतो प्लास्टिकको बोतलमा घाममा राख्ने, औषधिहरू राखी पानीलाई निर्मलीकरण गर्ने विधि हो नि काका। त्यति मात्र होइन, पानी राख्ने भाँडो सफा हुनुपर्छ, खाने पानी सधैँ छोपेर राख्नुपर्छ नि।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
3: का हुई बाबू, अपने कलका लाइट रही, अपने काकर कलका लाइट रही। ले यू भुइया में के हो, काकर भुइया में धनवा नाल बाटी।
4: सुनिए ना दादू, हमरा दुनू जना बना में घास काटा रहल है, मर संग भी सब पका द। नी ना दादू, हाली का करना होई, एही ना सत्ते हो पता के नमा पुगाए कोले से हुए रहा।
3: ओहो, ऐसी ब्याला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई। यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा, फोन कई दादू, अपने नी आते है ना, संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश, तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना, सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन, तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल। राजमार्ग 400 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा। मुकेश जत्ते ही आओ, हाँ सबको काम छोड़कर
5: बेटा संतोष, मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी ना।
3: सुनी बाबू, सपो कटलक मने है ना, जत्र साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता। ऐसी ब्याला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता। यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच में सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता। मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई, मोर भर पर न संघरिया, मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डाल हूँ। अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
4: गुण लगा दे दादू,
6: याद करी सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
7: यदि समय में जो उपचार कर सकले सांप डसलक मने बचाई सक दी था, वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था। सांप डसलक मने है ना छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी, यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
8: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: नवजीवन सहकारी संस्था के 32वां वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर्से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव होकर संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कैहिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकलक हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार, समय बिहान के 8 बजे से संध्य 5 बजे सम, स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली, नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क नंबर 091-520-283।
1: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव और शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: ए बा आई गई क्या, आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाई।

0: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: ओए रजनी, ओ वहाँ बासक नंबर लक्षी बा देखाओ त, कत्ते लिखाओ त?
2: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर लक्षी खा देती अब न।
1: एक फो तपा बाका मुर्गिन खा रखे, लक्षी से डिवेले से बक्ता की, आनो हरी छट्टा।
2: तापन घिसका ये चलाई नहीं हुई थी, नहीं तो अमन दस शाकर, बेन घर भीतर आए लागी कलर से भगे भी।
1: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी व खाड़ी कहीं का भगाए खुद लखो का।
2: आरम कीड़ा फटिंगा मुर सांप सिर निशा करके फलाम को जारी लगा पात तप्पा मुर्गिन खेती पुगाई नहीं थे कि बेन अपना न दाखी दूर रबीना
1: हो बिना तो का करना हो तप्पा देखती कि जन नागर रबीना रही सा देव तप्पा तो अपन घूम का बारी वो कल गिनता
2: हमरे के सांपन से डरे ना नहीं बोली मुकर के अमन से डरे था एडी क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग सांप दस ना कर था
3: सांपन से दूर रही सांपन रीस नी लगाई व नी जिसके सांप मने देखा डरे था निचलाख दूर रहनसे साप नि डस्ट तर मुक्र खैना खाज बाहिर निस्कन बेलामा घाँस काटा बेल छाला बेल ड्याङ्ग बेल छुबेगछ मनै मही मारकलागबाट कना सबस्क पट्टि रक्षा कना क्रममा साप दस लाख रठ मनै सापन व्यक्ति कि मारकलाग रठ ओसीको करबे फेर साप दस लाख रठ
4: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाएक लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टीकापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभाको बैठकको गणपूरक संख्या नपुगी तपसिलको मिति स्थान र समयमा पुनः बस्ने भएकाले पूर्ण पार्षद ज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानेर साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 10 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभाहल समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 091561022। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टीकापुर कैलाली।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के वस्त्र बाटिन गटिलो ठाव से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: कापिएर इठका बि पेन्सिल रहिठक बु झनै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा के ओस्ता बाटिन गटिलो ठाउँ से झलान लसे त लड़का सामान निहेर
1: ओहो ई बुढा लिखे का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपि हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिये रहती ना कबू पेंसिल रहती ना झोला फाटल हुई कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रटगे यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
3: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
3: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
4: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: कार्यक्रम मझेरी मझेरी
1: मझेरी। भैया ना करा रेडू बिगड़ी
2: नहीं का मम्मी टी कपूर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आईटा वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे

0: 91-561-255 में डायल करे ना भूलेगी। केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz।

जिक्र बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी की सलाह के बैठल सक्कू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संगे स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहत नामी छो हम टीक में बैठ के साथ दे रही भाई आकाश चौधरी और मई बाटो अपन के अपने संग्रह संगे कसिन बहाल खबर बेगुल कौशल मंगल आराम हुई मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई कना भरपूर वास में बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में व्यवटाल में यात्रा में जे जहां हुई भी जोन ठाव में हुई भी वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनईबी का नाम में जानकारी करना चाहम ओकलक हमारा लाइन खुला बा और 091-61-2255 इन नंबर में डायल करके हमारे संगे कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा सुनाये अभी ओकलक हमारे लाइन खुला करे बारे जैसे अपने गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर चिरे चुरगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल केकरो कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा दी अपने धन हुई कल से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनेगी और अपने को हमारे रमायला सहभागिता रही तो फटाफट से ही डायल कर भी 091-61-2255 के लाइन में संगारी को गर्मी बा गर्मी के समय बा इस समय में एकदम घाम लागत हुई अपने गर्मी हुई भी बिल्कुल खलखल खलखल पसीना बहत हुई और उससे कि अपने जैसे ई बेला में चाहिए अपना जोरदार घाम लागत की हमारे पंखा की हवा फिर टाटुल महसूस हुई वस्ते की हवा नहीं चले लागत टावर छपट छपट करे लगभग तब मेरे ई बेला में बड़ा समस्या बा शरीर कुछ ठीक ठाक नहीं लागे लगना मेरा एक अवस्था बा गर्मी के कारण का अब भाई लगभग दुई तीन तीन दिन हुई था आज लगा के लगभग एकदम जोरदार गर्मी बा अपने पता ही हुई तो अपने जहां रहे से फिर एकदम अपन स्वास्थ्य ही ख्याल करके काम कर भी करना मैं अर्जी करम जहां हुई भी स्वस्थ रही और व्यस्त रही काम करे बाजे एकदम ध्यान देवी और पानी चाहिए एकदम ढेर पीबी कहे कि पानी कना चीज शरीर से एकदम ढेर निकलत ई बेला में यानी कि पसीना के माध्यम से उमारे से पानी चाहिए पीना प्रयास कर भी कहे कि जानना जान के पसीना के माध्यम से शरीर में पानी कम हुई से कट तमारे पानी पीबी गल से आप उनको बिछा बिछा पानी पीबी सोच थी भी कि मैं एक लीटर पानी एक चोट में पी दू दो लीटर पानी में एक चोट में पी दू सोच थी वैसे ना कर भी बिछा बिछा पानी पिए पर कमटी में एक लीटर पानी पिए लग अपने एक घंटा सम बिछा के पीना जैसे एक पाव पी ली गल से एक हसी के फेन पी तब जाके कुछ समय रह के फेन पी तब जाके कुछ समय रह के फेन पी ऐसे के बिसा बिसा पानी पी भी गल से शरीर में चाहना मेरा एक प्रतीक मतलब शरीर रहे चाहना पानी चाहिए वो मेरा एक पी भी तो मिलत अपने सरसर से पानी पीबी जस्ते कि बही आए जे एकदम सरसर सरसर आयल बहिया सरसर सरसर ओराइट है वो हमारे जस्ते कि पानी पीबी वस्ते के पिशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा तो हमारे शरीर में उसी खास के शरीर में पियल पानी के कोई फायदा नहीं रही हमारे बिसा बिसा पीबी तो वो पानी काम लागत शरीर में तो ऐसे के पीबी करना जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत में रमायलो गीत जोड़ अपने अपन चैलेंज सुनाएगा ऐसे कर भी तत्सम रमायलो गीत गीत के पास में इन्हें बात हूँ

0: यो रमाइलो गीत के बाचा पेन्छ स्वागतमा कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटो मामेसानमा के साथ धेरै भाइ आकाश चौधरी अरू यो रेडियो टिका प्रयत्न एक सय मेगा हर्ज सन्तेपाती कार्यक्रम हो मझेरी मझेरी कनै सिनाङ्ना हो जहाँ अपने घर हमार भेटो के रमाइलो गप गर्न थाउँ सँगै दिन कसी के बिताइटी अपने घर हमार सँगै सेयर गरे आई दिन कसी के चल्ती बा अपने के दिनचर्या कसी बित्ती बा प्रा गर्मी बा हेरिना कसी के समय बिताइटी बिहार छिट छेकली किसान दाजु भाई हुँके लागत कोही बिहार छिट छेकल हुँ छिट्ने तयारी हुँ पानी कसी के लागत आफ्नो हुँ खेतमा कि नै लागत हो कसी के बिहार छिटली इन्जन के पानी से हो मोटर पानी से हो कसी के हो अपने कसी के अपने मतलब दिन बिताइती का करके अपने दिनचर्या चलती बा हमार संगे शेयर कराए हमार संगे रमाइलो गप कराए अपने के संगे हमें गप करे एकदम तैयार बाटूम एकदम तैयार बाटू तो अपने जहां रहें व्यस्त रहें स्वस्थ रहें व्यस्त रहें जहां रहें हमार कार्यक्रम में सहभागी जनईकन मैं अपने निवेदन का थो ओके हमने लाइन खुला कैले बाटी 091-5-61-255 अर्थात 09-1-5-6-1-2-5-5 लाइन हम एकदम अपने खुला कैले बाटी करीब करती 1:45 बजे सम हमार संगे संगे यात्रा कर दी कना में जानकारी करती बारो तो कार्यक्रम में कोई टेलीफोन लाइन मेल बाटे भाई आकाश कहती बाटे मिशन जी अपने कोई लाइन मेल बाटे बलकारी घाटे में बोल करना चाहता हूँ हजूर राम राम
1: राम राम
0: के बोल ली कहाँ से
1: मैं से चिल्ली की नहीं मैं पुरान संग्रह हूँ अपने
0: अपने का आवाज अपने का आवाज क्लियर नहीं है अभी शायद बटोईटी जाए शायद चीन है से कम मई के
1: नहीं वो आप बोल तुझे
0: बोलती बाटी नहीं
1: बोल तू अपने काहे नहीं सुनती
0: चीनला लागल आप शायद थोड़ा वो अपने चाहिए शिविर से बोल दी ना भग रहिया
1: पुरान संग्रह हूँ
0: लाल लाल बहादुर की का अपने के नाम
1: हजूर हजूर
0: याद आ गिल मैंने
1: याद आ गिल ना
0: हजूर तारा ठीक है विश्राम चाहिए
1: राम राम
0: नमस्कार राम राम तारा मिहिन ठीक है नाम याद नहीं आई थी तारा दिमाग में चाहिए अपने हुई कह के जान गिल रू मई
1: हजूर हजूर
0: बताई का बा हाल खबर
1: ठीक बा घाम बा बस बगिया तर बैठल आराम करती हल्का मिंटी
0: बगिया में तो आम फरट कोसम फरट काका फरट का हूँ लीची फरट ना
1: निमोबा का तहर बा
0: ओहो सब कुछ बात अब तो बगिया में अब बनार बैठल सका सक कटहर हुई ही ओके ठेके कहाँ से फोन कर लिया भाई आपने
1: अब भाई है बगिया में से
0: बगिया तो बगिया मतलब
1: यह शिविर से
0: भूपू का मैया शिविर नहीं
1: हजुर हजुर
0: ओके कसिन बा उहाँ लिंग का हाल खबर
1: ठीक बा सब ठीक है बा और बुढ़ाई गिली मैं को एक तो भेंट कैली
0: ओ अभी नहीं हुई बुढ़ाई जे अतरा हाल कहाँ बुढ़ाई दे है तो हमरे अभी तो अपने के जवाने जवान रहा समय आवाज खन जवाने जवान बा कहाँ बुढ़ाई भी अतरा हाल तो बताइए आज हमन का सुनई भी
1: हाँ कहूँ ऊँचा हुई तो
0: हल्का वल्का को व्यस्त ही नहीं तो कार्यक्रम मार्फत बता दी एक तो हल्का
1: हजूर बता देवी ना अबे जाए
0: नहीं नहीं मतलब एक तो हल्का व्यस्त ही तो कई रुपए ले ठीक है कि आपने बताई सक बीजे
1: 13 रुपया
0: 13 का लेक 1300 हो कि 13,000 हो
1: 1300
0: चलिए कोई बात नहीं आप हमरे कहना चाहब यदि कोई लेना चाहिए अपने ठंड से हल्का मच्छी मरना बरखा फे आई का नहीं मच्छी मरने हल्का लेना चाह भी कोई संगारे हूँ के तो अपने हूँ के सीधा लाल बहादुर जी है संपर्क कर भी या हम फिर संपर्क या सोचे मिहिन संपर्क कर ले से फिर होते मैं लाल बहादुर जी से कॉन्टेक्ट करवा दे
1: संपर्क करी तो फिर बता देगी
0: हाँ बिल्कुल है बिल्कुल है 1300 रुपया की मीरत का हूँ
1: मैं सुनाई तू कार्यक्रम
0: हाँ हाँ ठीक बा ली अब आपने वो करी अपन प्रतिभा सुनाई आज का सुनेगी
1: हजुर सुनाऊ
0: हाँ सुनाई शुरू करी
1: अब कहा नहीं मजा हो कि नहीं मजा हो मन सुनाऊ
0: मजा मान के सुना हमरे सुनाई
1: हजुर

0: कौने विधि करबु गुजारा। अरे घर घर मोरे फूटी गई ने खेतवा मोरे बाटी गई नहीं रही गई नू घर में अकेली। सांस में पुगा मिला था जो
1: ठीक है ठीक है मजे लगता।
0: अरे धन के बदलारी नहा ठला जल से क्या बनानु का मैया मैं दुखिया बातू जल मके का मैया कौने विधि करबू गुजारा हो। सबके लरिका परत है शहर में मोरे छावा छाई घास कत एक छावा बाव जालम के भैंसरवा छाई मोरे बात छिया हो। मई दुखिया बात जालम के कामैया कौने विधि करबू गुजारा। नमक नहीं गाऊ हजूर के
1: चली चली कोई बात नहीं बड़ा मजा गीत सुनैली मई दुखिया बाटू जलम के कमैया कैसे के कर गुजारा हो बाप रे बड़ा मजा हमार गीत सुनैली धन्यवाद। अब हमरे एक छोटी मजा बा अब मजा लागल मजा बा समसामयिक विषय में अपने हमके चित्रण करके बनाल गीत हो नहीं एक भैया कमैया काका बहिना छगरिनिया बा कैसे के करू गुजारा बड़ मजा के मिला के गीत गैली धन्यवाद। अब चाहे हम एक गीत सुना अपने है अपने किन किन सुनाये चाहे अभी नाम ली
0: अब अच्छी बात है एक हमार बुढ़िया नाम ले परी
1: अपने के विचार नाम ले बीटे ठीक बनाए ले बीटे कोई बात नहीं हो
0: एक देखने बात है एक जलम के दोरिया बाहर जान सुनाई तो
1: ओके अब
0: मैं चिन्ना नहीं चिन्ना सकू जान सुनैना और हजूर है विशेष करी हजूर है
1: धन्यवाद। अब एक विदा हुई लाल बहादुर जी राम
0: विदा तो हुई हजूर है अब आज भेट हुई ली अब ये बात समय अब कनी हम गरम समय कहीं आज भेंट कैली अब मौका ले भेटे न भेट
1: चली कोई बात नहीं खुशी लागल अपने से भेंट हो गया अब रे बेला हुई भी जे भेंट लिया बेटल विदा हुई राम राम वहाँ पर लाल बहादुर चौधरी जी भोपू कमैया शिविर से हम कॉल कर रहे फोन कर रहे वहाँ है देहुलो धन्यवाद मजा गीत सुने एकदम माया कथे हमारे कार्यक्रम है समग्र है सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम एकदम माया कथे वहाँ है बहुत बहुत ढेर ढेर हमारे ओर से बहुत बहुत माया बा और समझना बा और वहाँ हमारे कार्यक्रम में सहभागी जना दे वहाँ के लगे वहाँ है देहु देहु धन्यवाद कहती अठी टू गीत जोड़ा गीत के पास मैंने बारू डाल करते कर भी सुनने 91 5 61 255 लाइन खोल ले। Thank you.

0: हजुर सिन जोर्सी माया बाझल फुला झरी गल बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोडी कार्यक्रम आफ्नो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाइसक थिए 0915162555 अर्थात 0915612555 लाइन एकदमै खुल्ला फटाफट डायल गर्ने गर्छ आफ्नो हाम्रो रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गप्री आफ्नो हाम्रो रमाइलो बातचित बताब काहेकि आफ्नो हाम्रो रमाइलो बातचित गर्न यी ठाउँ हो और क्वायलबाट फ्यान्सी हाम्रो टेलिफोन लाइनमै मै के हुने बोल्कन चाहन्छु हजुर राम राम हजुर राम राम
1: हजुर नमस्कार
0: नारायण जी हो
1: हजुर
0: नारायण जी बताए हाल खबर कैसिन बाजू के हाल खबर
1: कभी बात नहीं करना काम भाई अब हाल खबर घाम लगा पंखा हवा खाई
0: ए बिल्कुल ज्यादा घाम बा नहीं आज से
1: हजुर
0: ओहो का कर भी अस्ते तो अब घाम रात एक सिर पे घाम हो जाए जार रात एक सिर पे जार हो जाए हम अब सब कुछ सहेक पड़ना मनई मनई हुई हमें सब चीज सहेक पड़ना रह क्या करना हो ना
1: घाम से जारे से मजा लागत है
0: घाम से जारे मजा लागत नहीं जितना मन लागी उतना खा ले बो जैसी मन लागी फाटल चीटल लुगा लगा ले बो ना रोज रोज दिन लाइक नहीं पड़त
1: रोज दिन लाइक नहीं पड़त टाइम फुर्सत
0: लहा ले बो और ये घाम सेक्टर शांत बिहान नहीं लही भी तो मजा नहीं लागत
1: पसना छुट्टी
0: के अब घर ही से फोन कर ली हम
1: हजुर
0: के कार्यक्रम सुनती रहे एकदमे खुशी लागल कार्यक्रम में सहभागी जनैली और अब धीरे धीरे घाम अभी दुई चार दिन बढ़ नहीं है सकबा दुई चार दिन अभी घाम आस्ते आस्ते हुई ना बा नारायण जी का कर भी नहीं तब मारे अपन स्वास्थ्य है ख्याल करके काम कर भी ज्यादा घाम हुई तो विशाले भी ना ठाव रुखवाटर या हावाटर कहूँ कहूँ तर घाम में मई घामे में काम करम मैं आस्ते हो घाम कह के अपन जीव जान है फिर ख्याल करके काम कर भी कल से मजा रही नहीं
1: हजुर हजुर हमरे आराम कर ले फिर घाम लागत तो कितना ले फिर कल राजापुर में जाए कलर हम पठा देने पर बात नहीं जाए छुट्टी नहीं मिलल 3 बजे से यहाँ से नमन हेरी
0: चलिए कोई बात नहीं कार्यक्रम में सहभागी जनैली खुशी लागल अब भाई हमरे हमन का सुनई भी आज कल तो मई सुनैनु अपने काली के दिन नहीं
1: हजुर
0: गीत सुनैली हमरे यहाँ अपने आज अपने का सुनई भी
1: गीत गा
0: दो महीना फिर गीते हो गीत फिर गीते हो अपने चेहरा सुनाई

0: lain. Putarera sahara dakin hiru di kahumain. Avarmaya dharmarakavi jinda bidu kahumain. Amar maya jinmara kali jinda bide
1: धेरै धन्यवाद नारायण जी बडा मजा महिना गीत सुनैली धन्यवाद अब हाम्रे एक थो गीत बजाब अपने लग अपने किन किन सुनाई चाहबी अपने नाम लेख सकथी
0: सबसे पहले अपने हो आकाश कर है
1: धन्यवाद
0: और जट्टा भी कार्यक्रम सुनिए रेडियो सुने नहीं जट्टा भी मनात पात के घरे जट्टा ही नारायण चिन्ना ने चिन्ना सब कुछ हम तो भाई भाई
1: हजुर हजुर राम राम वहाँ पर क्या है नारायण चौधरी जी रमाइलो गफेलो हाँस्ते अब अठे पर एक गीत जोड़ब हमारे गीत के पास मैंने बात डायल करते कर भी सुन्य 91-561-255 के लाइन खुल रही बात डायल करते कर भी कार्यक्रम ऐटे कर भी तब समय रमाइलो करी ई गीत से

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आज इठा का कना हो बाबा के उस तबातीन गटीलो ठाउ से झोला अनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका इठा बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गोर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनंद झोला दस कटरस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सीध जाइब पाछ से शुरू करल मने घर सीधार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
3: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
4: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ
3: तपसिल प्रवेश परीक्षा फारम वितरण हुने मिति 2083 साल वैशाख 21 गते सम्म सीट संख्या 48 जना मात्र फारम उपलब्ध हुने समय बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म आवश्यक कागजातहरू कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र फोटो 2 प्रति
4: प्रवेश परीक्षाको मिति टीकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा संघको समन्वयमा तय गरी जानकारी गराइनेछ
3: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुर 1 कैलाली प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा सम्पर्क फोन नम्बर 9858441667 र 0915614411
5: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुई न हुई लेकर से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव होकर संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र व नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई हिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुई हार्दिक अनुरोध करती मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संजे 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी के लक संपर्क नंबर 0915202883
6: ए रुको रुको रुको
7: के भयो किन कराएको यस्तो
6: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
8: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र
6: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
7: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
9: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन् किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा असमानता बिग्रदो स्वास्थ्य एचआईभी एड्स बलात्कार घरेलु हिंसा बहुविवाह आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन् नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो बाल विवाह गर्ने गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक शिक्षक समाजसेवी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ बाल विवाह विरुद्धको अभियान
10: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
11: शरीरमा लाल वा फुस्सर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना दाग देख पर्लसी हात द्वारा झमझम गर्ना तथा मास सुहाको बठिना हुलसे कुष्ठरोग हुइसेक था।
12: कुष्ठरोग महिला वा पुरुष जेहीफे लागसेक था। कुष्ठरोगको शंका लगे कि लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
11: महिला उक्र अस्पताल सम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्ना घरक पुरुष उक्र मद्दत गरी।
12: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।

0: 9561 446 9848 43 31 79 र 9848 43 77
1: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली। टिकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आईतवार बुधवार बिरामी जांच गर्न आउनु हुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
2: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी जबसम हाम्रे सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुइबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी।
3: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगके कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।
4: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
8: ए रुक रुक रुक,
9: के भयो, किन कराएको यस्तो?
8: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
10: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीज को फ्री एक्सेस पनि
8: हो र? हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
11: ओहो, अझै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 1-2-3 हास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस्। एनसेल, नेपालकै लागि।

0: टिकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको अनुरोध। नेपालको संविधान 2072 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र 2083 विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरकारवाला जीवहरूले विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा टिकापुर कैलाली।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने पट्टा नि पैना त
2: अनि गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिले नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइ कहु सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाइ
3: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर बेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239161।
4: दाई नाचबा कहाँ जाए लगभग
5: ये सब लगता चर्पी जाए टुका
4: ए रुको नाटक कोसी नो कला से मई टॉर्च लाइट और लट्ठी जो है तू लेख जाओ
5: का चीज सुनो लट्ठी और टॉर्च लाइट
4: का करो रही दाई रात इकदाला बाहर निकल पड़ला से वाट वाले जाए पड़ला से जहा फिर टॉर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी देख के ना जाए पड़ता का करो की बरखा छक बा सांप रह सक था टॉर्च का उजाले सापन दिया खा सक गई था वो लट्ठी ठेक ठेक आओ सुनकर साफ भक्त का
5: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
4: दाई हम ना स्कूल मैडम सर नुक साफ नुक सीधना ठाव सी न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहा फिर ठप होशियार भी पथा गई खा सीखे लाट का आम छटवा दिवा झपा अथवा झांगा चलक ठाव में न्याग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठैक ठैक बजेटी न्याग पथा गई खा कल बाट
6: साफ बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परेछ यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैसना पिला कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा हुँदा बाहिर निस्कट
7: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्न क्रम फिर साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ
5: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैथ पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक दिथा
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
9: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौ।
10: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
11: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
10: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
11: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
12: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: खोजत खोजत खोजत राजापुर तक खोज
1: कहाँ से खोज लो गोचुआ
0: अब बे बताए अरे टीकापुर खोजिनु नारायणपुर फे खोजिनु धर्मापुर और प्रतापुर में फे खोजिनु खोजिनु जाके थापापुर में खोजिनु जो के मोहनपुर में फे होय मोर मन परल होय होय होय मोर मन परल मन रखनी भेटेनु ज्योतिपुर में होय मोर

0: अरे का बात बा गोरी
1: पछू पै लैनु मै पुरु पै लैनु खोज खोज सारा मनहार मझैनु जति के योहर ओहर न्यांगनु मै दुनिया भर घुमनु तोहर हसमन रखनी कहू नहीं भेटैनु
2: लाखों हजारों में तू ही मन पर लो मैं भेटो ठाव ठाव में चक्कर चलैनु
1: कबू पुगरू मुनुआ कंचनपुर में कबू लाल बोझे कचर

नवजीवन सहकारी संस्था के 32वां वार्षिक साधारण सभा संबंधी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभावक र संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई हिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार, समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम, स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली, नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क नंबर 091-520-283।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संक्षिप्त पांच बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurafm.org मोबाइल एप हम पत्र और नेपाली पात्र अफिस इंटरबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से अपांगता हुलक व्यक्ति उनके लाग विपद पूर्व सूचना तथा विपद व्यवस्थापन संबंधी दुई दिने तालीम। सुत्केरी व्यथा लागल पक्ष हुमलाके गर्भवती के हेलीकप्टर मार्फत उद्धार। कक्षा 11 के पठन पाठन असार 1 गते से शुरू करना शिक्षा मंत्रालय के निर्णय। ओ सड़क विपद और भूकंप पीड़ित के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण। पूरा खबर अपंगता हुलक व्यक्ति के लाग विपद पूर्व सूचना तथा विपद व्यवस्थापन संबंधी दुई दिने तालीम हुआ। टीकापुर नगरपालिका के आयोजना महिला तालीम में 35 जना अपंगता हो वहां सहयोगी करके 56 जना तालीम दिलबाट पालिका विपद पूर्व सूचना बारे जानकारी देना कार्यक्रम पटेलबाट विपद के समय में अन्य नागरिक से अपंगता हुलक व्यक्ति दिना सूचना फरक हुई सकु जैसी सूचना में पहुंच नई हुईलक कसिन का के सूचना दिलक सह सुना के तालीम दिलक नगरपालिका जनबाट वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी बुटीलोबाटी पालिका में आगामी वर्ष के योजना समेत निर्माण हुटी रह अपंगता हुलक समावेशीकरण अपंग मैत्री योजना में प्राथमिकता दिना तालीम दिलक चौधरी के कहिबा शैक्षिक तथा कैलाली अपंगता

0: सेवा संघ दुर्गा खत्री विपद के समय में अपंगता हुलक समय में सूचना पैनाओ सुरक्षित स्थान में जाना कठिन हुना हुलक सूचना में पहिलो प्राथमिकता दिनाओ अपंगता मैत्री संरचना बनिला सहयोगी वातावरण बढ़ाई पर्ना बुटिलो बाट होटल व्यवसायी महासंघ के केन्द्रीय सदस्य निषाद विक्रम बम आपन अपंगता हुलक अपांग मैत्री होटल बनिना लगलग बुटिलो बाट विपद के समय में अपंगता हुलक प्राथमिकता देखे काम करपना सेल्ट हो के अपंगता मैत्री बनाई पर्ना बुटिलो बाट वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति के संयोजक तथा वड़ा नंबर 6 के वड़ा अध्यक्ष बलिराम चौधरी विपद में पूर्व सूचना तथ्यांक महत्वपूर्ण हुईलक वड़ा नंबर 6 में सकु तथ्यांक अलग अलग बुटिलो बाट हुम्लाकी एक गर्भवती महिलाकी जटिल स्वास्थ्य अवस्था हुई पाछ नेपाली सेनाकी हेलिकप्टर मार्फत उद्धार तलबाट हुम्लाकी सर्केघाट गाउँपालिका एक 19 वर्षीय ललिता नेपाली सुत्केरी तथा व्यथा लगलग 6 दिने बीतलक समय बच्चा जन्मिना नै सकल पाछ आज नेपाली सेनाकी हेलिकप्टर मार्फत सुत्केर पठिलोबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराकी अनुसार बुढीनन्द नगरपालिका स्थित कोल्टी आधारभूत अस्पतालमा उपचार केला पुग्लक नेपालीकी अवस्था जटिल बनल पाछ सुविधा सम्पन्न अस्पताल रेफर गर्न रही ओकर पाछ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी समन्वयमा नेपाली सेनाकी हेलिकप्टर मार्फत कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत पठिलक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिरेन्द्र निरौला जानकारी दिएल कोल्टी आधारभूत अस्पताल के अनुसार लागत 6 दिनसे सुत्केरी व्यथा लागल फे बच्चा जन्मना नै सिक्लो युनाङ्ग लगातार पानी बक्ती हल्की अवस्थामा बिरमेको थप उपचारको लागि रिफर गर्न रही सरकारकै दुर्गम क्षेत्रकै जटिल अवस्थाकै गर्भवती तथा सुत्केरी महिला आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरिन राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेना मार्फत निशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन कर्तृत्वबाट खोज खबरमा एक विश्राम विश्राम पाछ फेरि सामुदायिक रेडियो टीका पुरा फेम
1: शरीरमा लाल वा फुस्सर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुजिना डाग देख पर्लसी हात गरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठ रोग हुइसेक्ठा
2: कुष्ठ रोग महिला व पुरुष जेहेफे लागसेक्ठा कुष्ठ रोगको शंका लग्केकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
1: महिला उग्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्ना घरक पुरुष उग्र मद्दत गरी
2: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माण का लाग साइनिंग अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके से जनहित में जारी संदेश
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
6: ईसीजी सेवा
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
5: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
0: शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय आगामी असार 1 गते से कक्षा ग्यारके पठन पाठन शुरू गर्न हुल्वा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासिकी नतिजा एक महिना भित्र प्रकाशित हुल्पाछ। मन्त्रालय कक्षा एघारके पठन पाठन असार एक गते से शुरू गर्न निर्णय गरिल्वा। ओ निर्णय बमोजिम सूचना प्रभाग कर्णा सक्कु विद्यालय ओ स्थानीय तह कुमसे पत्रचार समेत कर्णाकर्की शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मन्त्रालय निर्देशन देलबाट इन्स्याग यासिके नतिजा कब प्रकाशन हुना कक्षा एघार के पठन पाठन शुरू हुना हुलक अनियोलता रह विद्यार्थी अभिभावक के अनियोलता चेती शैक्षिक सुशासन कायम करके पठन पाठन प्रभावकारी बनेना मन्त्रालय यासी के नतिजा हाली प्रकाशन हुलक पठन पाठन फिर समय में शुरू करना लगलग बाट कक्षा एघार के पठन पाठन असारे गते से आरंभ कलक विद्यालय शिक्षा के गुणस्तर में वृद्धि हुना सक्कू विद्यालय तथा के सक्कू कक्षा के पठन पाठन में एकरूपता कायम हुना करके व्यवस्था कलबाट संविधान संशोधन केला बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलके अध्यक्षसिंह राजनीतिक व्यक्तित्व संघ छलफल शुरू कलाबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहके राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहके संयुक्तमा गठित कार्यदलके बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालयमा संविधान संशोधन बहस पत्र सम्बन्धी सुझाव संकलन केलाक राजनीतिक व्यक्तित्व संघ छलफल कलाबाट प्रधानमन्त्रीकी निजी सचिवालयके अनुसार छलफलमा सत्ताकीय नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा संघ विपक्षीय दलकी नेता ओ विज्ञ सहभागी हुल्बाट। खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछा फेरसे विश्वतिर विश्राम मुदायक रेडियो टीका प्रफेम
7: आइहो बड्डो घर कहिया छिर जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
8: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
7: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी मिल की गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
9: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326।
11: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
12: जेठ 16 गते शनिबारका दिन
13: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
11: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
13: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
12: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिबार
14: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772।
15: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
16: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम प्रोग्राम पाछा फेरसे स्वागत बा। प्रतिनिधि सभाके आज बैठकमा सांसद उग्र सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण ट्रमा नीति के आवश्यक विपद जोखिम न्यूनीकरण के भूकम्प पीड़ित केला आवास के व्यवस्था वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती लगायतकै विषयके सरकार ध्यानाकर्षण गर्नबाट सांसद तोषिमा कार्की सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न हो राष्ट्रिय ट्रमा नीति तत्काल निर्माण गर्नमा कलबाट उहाँके दैनिक औसत आर्जनाको दर वर्षेनी 3,000 सड़क दुर्घटनामा ज्यान गुमल कर्लकटी सड़क दुर्घटना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकट घोषणा गर्के हरेक दुर्घटनाकै वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न हो दीर्घकालीन नीति बनिना आवश्यक रहला कौडिलोबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद अर्जुन नरसिंह केसी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद प्रति जवाबदेही बन्न पर्नामा जोड़ दिलबाट उहाँकी आगक सरकारकै कार्यकर्ना हो के तर नै लागे कार्यगत योजनाकेले स्थिति बढ़ना सेक्ला खुला परिणाम देख न करके काम करना संसद और नागरिक प्रति जिम्मेवार बना सरकार अनुरोध कल बाट वहां फिर मनसून शुरू होने लगलग मनसून के तराई मधेश लगायत मुंडू के धेरो सिंह भाग में परसकना क्षति हो जनधन की सुरक्षा के समय में नहीं काम कर पुना बुटिलो बाट नेकपा एमाले की सांसद पद्या आरियल पेट्रोलियम पदार्थ में अलग अलग आवश्यक ओ दोहोरो कर तत्काल घटाके जनता ईंधन और गैस में प्रत्यक्ष राहत देना माग कल बाट वहां के सार्वजनिक यातायात में वैज्ञानिक वाहन भाड़ा दर कायम करपना विपन्न ओ विद्यार्थी केला विशेष सहुलियत प्रणाली लागू करपना ढुवानी भाड़ा नियन्त्रण करपना गरीब श्रमिक को मध्यम वर्ग निश्चित करके विशेष राहत पैकेज नगद सहायता वाती उपभोग्य वस्तु में सहुलियत की व्यवस्था करपना में आकलबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गोपाल शर्मा लम्बा समय से बिदलक पाछा जाजरकोट भूकंप पीड़ित के पुनस्थापना हुई नई सकलकटी रूकुम पश्चिम लगायत के भूकंप पीड़ित सुरक्षित आवास की व्यवस्था करनामा कलबाट वहां के सरकार संविधान और कानून के उल्लंघन करती निरंकुश अहंकारी मार्ग मनिंगलक आरोप लगती जनता भुक्तिरहल पीड़ा और समस्या प्रति सरकार गंभीर और संवेदनशील बनना नैसेकलक बोटेलोट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सचेतक खुशबू ओली संघीय सरकार प्रदेश और स्थानीय तह प्रदान करते वित्तीय समानीकरण अनुदान में कटौती करलक विषय विरोध कलबाट वहां के संविधान ने स्पष्ट रूप में करक व्यवस्था विपरीत सरकार के हस्तक्षेप संवैधानिक संस्था के स्वायत्तता व औचित्यता के ऊपर प्रश्न खड़ा कलक बोटिलोट स्वतंत्र सांसद महावीर पुन टैक्सी के कालो नंबर प्लेट वितरण में भारी आर्थिक चलखेलो भ्रष्टाचार हुटी टैक्सी व्यवसायी मजदूर और शोषण में पलक दावी कलबाट वहां किसान दुख लिटी बांदर आतंक नियंत्रण करना आवश्यक रलकटी वहां के नियंत्रण के लाख अनुसंधान उपाय खोजी आवश्यक रलक बोटिल बाट सांसद थोक्र मनसून शुरू होने लगलक वो यह वर्ष सदस्य कम वर्ष होना अनुमान करलक धान लगैना समय फिर पानी नहीं ऐलक किसानों देश के लाख भारी असर पर्ना कटी कम पानी में धान ओ बीया किसान संघ पुगैना माकलबाट बैठक में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल सांसद थोक्र आज के बैठक में उठैलक विषय में सरकार ध्यान आकर्षण कर यह समाचार संखोज खबर वाले जिला से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो अपंगता विधक व्यक्ति को उनके लिए विपद पूर्व सूचना तथा विपद व्यवस्थापन संबंधी दुई दिन तालीम सुत्किरी बेथा लागल बच्चा हुमला के गर्भवती के हेलीकप्टर में उद्धार कक्षा ग्यारह के पठन पाठन असार एक गते से शुरू करना शिक्षा मंत्रालय की निर्णय ओ सड़क विपद और भूकंप पीड़ित के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण जीटावकला खोज खबर अतः प्रावधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दीजिए अबकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई हूं अगर पास 6 बजे के खोज खबर सुन सकेगी सामुदायिक रेडियो टीका प्रोडक्शन सिद्धि रवि राम राम
17: का हुई बाबू अपने कलका लाइट रही अपने का करे कलका लाइट रही ले भुइया में के हो का करे भुइया में धनवा नाली बाटी
18: सुनी ना दादू हमरा दुनु जना बना में घास काटा रही मर संग भी सब पका दर नीना दादू हाली का करना हुई यही ना सत्य हो पता के नो पुगा कोले से मिले रहा
17: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नी आते हैं ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जबते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ का यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जबते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ खा
19: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी जबते
17: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी ब्याला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने ओ सवारी चालक के बीच सपो कटलक मनाई हन सुरक्षित हुईना मेर से बैठा कर तुरंत के उपचार केन्द्र पुगाई पड़ा। मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर न संग दिया मैं तुरंत बेहद में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डर हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आये
18: लगा डेली दादू तुम्हें
20: याद करी सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
21: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप दस लख मनिन बचाए सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दी था सांप दस लख मने है ना छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले वो मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
22: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
23: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौं। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना।
24: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
25: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
26: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
25: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
26: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
25: अब त म ढुक्क।
27: मिलन आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
26: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली।
25: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या, यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
26: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
25: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
26: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
28: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
25: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
29: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
27: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
26: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848571828।
30: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
31: बस देख गर, अहिले त म

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार बुधवार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बु से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि संपर्क नंबर 98-49-85-18-08।
3: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनले से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बराइती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेराकै ठ कबु पेन्सिल हेराकै ठ कबु झोलै फटाकै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: त कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कट्रा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनु हुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: www.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि एसए का कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ।
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
0: एसईई एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति,
1: जन्म दर्ता, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि,
0: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि,
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो,
0: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस।
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर।
0: सम्पर्क नम्बर 0969900044, 9858700044, 9847202740, 9762433921 र 9769963520।
2: उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोस हुइसेक नाफिला कोर्से पाछसे पकरक बैठा पर्थाका
3: ब्रह्म्याना अर्गर हुइना कैकमै पकरक बैठा टु सुनिल जी अपना जैसिन मोटरसाइकल स्वयंसेवक हुइलक कारण सर्पडंसक ब्रेमेन उपचार केन्द्र लैजिना सजिलो हुइल बा।
2: एम्बुलेन्स और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकल जो सबको ठमा सजिला पारी था कतना ठमा मै असक मोटरसाइकल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुइना मेर का सुचा का लगभग एंटी भेनम भिलक उपचार केन्द्र में लै जाए पर्था।
4: अपना हुआ जैनी करी ना मई द्वार लगा करके ला दे
2: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेन बिहा फोटो खिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
3: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई थी।
5: सप डल डालन कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच समा सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदम से उपचार केन्द्र में ले जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी।
6: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा।
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।